0: गई रूटे रीते बुके माही दिया दी वंडी गई। थैंक यू सो मच जी, जींदे वास्ते। हेलो,
1: थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जी, थैंक यू हर बार दी तरह जी। जी दोस्तों, ऐसा जी मोहम्मद जी बख्शी जी जुड़े सन अपने नाल दुबई तो, थोड़ा जिहा नैट दी शायद प्रॉब्लम सी उन्हां दे वल्लों, आवाज थोड़ी जी हो रही सी डिस्टर्ब, पर फिर भी सुनन जोग सी। लो फिर दोस्तों, इस दे नाल ही मैनूं ते आ गया सोमवार नूं मिलन दे वादे दे नाल होवेगी मुलाकात, ते जुड़दे आ फिर नवां वेला प्रोग्राम लैके सैटरडे संडे कल नूं जिहड़ा समझ जी संक्षमी होणगे हाजर महफल मित्रां दी लैके प्रोग्राम, ते प्रोग्रामां नूं सपोर्ट करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तां दा, धन्नवाद है अपने हरविंदर जौल भैन जी, जगदेव संधु जी, सिकंदर सिंह ओजला, महेश जी, भान सिंह गरेवाल जी, सुरेंद्र कौर माल जी, मान सिंह सैनी साहब, बलवीर सिंह सैनी साहब का शुक्रिया ते धन्नवाद है। लो फिर दोस्तों, हैव ए नाइस वीकेंड सब नू, ते रखड़ी वाला दिन भी मुबारक होवे, ते हसते वसदे रहो, खुशियां विच खेड़े लगे रहन, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल मुलाकात होगी भारतीय समा 9:30 बजे, सत बद घट बोल के गुस्ताखी माफ, ते सोमवार नू मिलन दे वादे दे नाल होगी फिर तो मुलाकात। सत श्री अकाल दोस्तों।

0: क्या बात है जी,
1: थैंक
0: क्या
1: यू
0: बात,
1: सो
0: बहुत
1: मच।
0: खूब मोहम्मद जी, बहुत खूब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार की तरह चंगी
1: शुक्रिया,
0: चॉइस होंगी थोड़ी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। दोस्तों इस जी मोहम्मद जी जुड़े सी, ते आखर दे विच आपां गलबात अपनी सुनदे आ, गुरीमान जी भी नाल जुड़े हुए ने, ते संखेप दे विच उन्हां दी गल सुन के फिर आपां कहानी दी सांझ पाउंदे आ। सत श्री अकाल गुरी जी, स्वागत है जी अनुजी भाई जी।
1: भाई जी सत श्री अकाल
0: सत श्री
1: जी।
0: अकाल जी, सत श्री अकाल जी अनु जी, की हाल चाल ने जी?
1: बढ़िया सर, तुसी दसो जी।
0: ठीक ठाक जी, तुसी सुनाओ की कहना चाहोगे?
1: मैं तां इह देख रहा सी जी, हुण दिल्ली वाले ते पंजाब वाले हुण स्कूलां दी मॉडिफिकेशन दी खेड खेडण लगे हुए है।
0: बिल्कुल है जी, बिल्कुल। कहिंदे तुसी हजार
1: हाँ
0: हजार
1: भी
0: तुसी चुनो गुजरात वाले हो, ते असी पंजाब दे सोच चाहुंदे आ। केजरीवाल साहब दिल्ली च बह के कहिंदे हजार ते नाल मीडिया लैके चलदे आ, कहना ते वधिया बेहतर कहना ते स्कूल ने दिल्ली विच
1: दास्तान
0: माफ
1: अज
0: ही कर गए
1: केजरीवाल साहब ने भी किया है जी।
0: जी।
1: दिल्ली दे विच ओदो तां स्कूल वधिया बने नहीं, हुण
0: जी
1: जदों सेंटर गवर्नमेंट आ गई है हुण इन्हां नूं माड़े दिखण लग पे।
0: बिल्कुल है जी।
1: ते पंजाब दी सिक्ख्या दा पद्धर तुसी देख ही रहे हैं, जिस स्कूलां दे विच जवाक ही नहीं हैगे जी,
0: जी
1: टीचर नौकरी टीचरां नूं मिलनी जी, कोई नवें टीचरां दी भर्ती नहीं हो रही।
0: जी
1: जेड़े हैगे हैं ओ कदे बीडीपी दी नौकरी निभा रहे हैं, कदे वोटां जनगणना वास्ते जा रहे हैं।
0: जी
1: उस मतलब ओ पंजाब दी स्थिति हो रखी है मैं स्टडी नूं लैके, भी
0: जी
1: जिहड़ी मतलब बयान नहीं करी जा सकदी, भी इन्ना लोक बच्चियां दी पढ़ाई दा हाल माड़ा कर दित्ता, ते
0: जी
1: पता नहीं है नंबर वन केड़े हिसाब नाल कही जांदे पंजाब नूं पढ़ाई दे
0: जी
1: मामले।
0: जी बिल्कुल है जी
1: थल्ले मैनू तां ऐ लगदा भी इन्हू गलती लग गई बोलने, ये थल्लो नंबर वन तो कहने होने, उपरों नहीं किया होना जी।
0: बाकी ओते दे दस सकते ने जी, जेड़े वसदे ने वसनीक जी, उना दे की हालात ने जी, बिल्कुल है
1: तुसी कदे पंजाब फेरी पाओ ना, चलो असीं तां मतलब
0: जी
1: ए चीजां च निकलते रहने आ, ओदा आपां पंजाब नूं पंजाब दे स्कूलां नूं वधिया किदां समझदे आ, भी बाहरों आपां रंग रोगन करता जी,
0: जी
1: अंदर आपां LED स्क्रीन लाती। मेन तां प्रॉब्लम हैगी है बच्चियां दा अपना म्यार स्टडी दा केड़ी
0: म्यार
1: रहा,
0: की है जी, बिल्कुल है जी।
1: ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ
0: ਜੀ
1: ਹੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 10ਵੀਂ 8ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ,
0: ਜੀ
1: ਜਦਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
1: ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ,
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ
1: ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ
0: ਜੀ
1: ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਈ,
0: ਜੀ
1: ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰੇ ਪਏ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ।
1: ਹੁਣ ਹੁਣ

0: Bestfoot Kitchen Cabinets LDD Custom Kitchen Work Custom Kitchen Cabinets Entertainment Units Fire Placement Vanities and Bars We do whole renovation. Contact us on office.bestfoot@gmail.com or call Vic Haraj 604-377-1092 British Columbia Bestfoot Kitchen Cabinets LDD
1: Chicago's Pizza with a twist in your town 8300 Sierra College Boulevard Roseville, California Wet and non-wet pizzas Home delivery available with one phone call 1-916-791-0102 Open every day Chicago's Pizza with a twist
2: कविते रसोई नु बुरा ना बोलिए पढ़ लिये तकड़ी ता पूरा तोलिए और जिन्ना चिर करे ना ले आइए डोले नू के बैजा बैजा कर छड़िए बचोले नू के बैजा बैजा कर छड़िए बचोले नू सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा अपना गुरजीत जीती ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो तुहाडी अपनी आवाज
3: जिंदगी नामा हाल ए दुनिया You are listening.
2: के कवि ते रसोई नू बुरा ना बोलिए फड़ लिये तकड़ी ता पूरा तोलिए और जिन्ना चिर करे ना ले आइए डोले नू के बैजा बैजा कर छड़िए बचोले नू के बैजा बैजा कर छड़िए बचोले नू सत श्री अकाल जी मैं तुहाडा अपना गुरजीत जीती ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो तुहाडी अपनी आवाज़

आपो बिच ना करां दे कोई नाते ने, कंधा पावे साबुत रिश्ते पाते ने, चौखी गिनती रूदे नंग अमीरां दी।

नगरी बिच मरदे बंदे तो वारी, एक एहसास ते दूजी मौत शरीरां दी। ए नगरी पुतियां लटक दियां तस्वीरां दी, ए नगरी पुतियां लटक दियां तस्वीरां दी। बने आए रिवाज के हाथ मिलाउंदे रहो, जो कुछ नहीं ओ बन के नजरियों दे रहो। फुल्ला चो खुशबू ना पे तलाश करो, बंदियां बिचों मोना पे तलाश करो, बंदियां बिचों मोना पे तलाश करो। और खबर

0: नगरी पुठियां लटकदियां तस्वीरां। जी सही आ रही आवाज जी? जी
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बा कमाल
0: सर, लास्ट तो पर रह गया ये था।
1: जी।
0: कहिंदा जी, एक दे नाल सलोंदे एक नाल डसदे ने, एक दे नाल सलोंदे एक नाल डसदे ने, इस नगरी विच बड़े तो मूहे वसदे ने, इना ते मखसूस पुरी की आस करे।

अल्लाह वर्गी जिंदगी दे दो पात्र ही ता लग दे सी कठिया बह के जदिया पानी पूर्ण माछी पड़ दे सी हाय नावण वर्गी जिंदगी दे दो पात्र ही ता लग दे सी इश्क अधूरे ले मुड़ गए पूरे कर साल कुड़े हाय किन्निया

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वारा।

गीत लिखिया, गीत लिखिया मैं तेरे लई ता, तेरे वाजों सानू मायनी, किसे कुट सीने ना लाया, तेरा कर इंज जापदा।